पदम आंगन सुख बासना सखी मोरै कंठर तन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नव निद बस है जिस सदा कर पार प्रिय रावण जाहे से लाजी है नित प्रत हिरह पर दर्ब छिदर कत ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पये पनीत पार ब्रह्म बीचारई ऊपर बने आकाश तले तार सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख को जोहती खोजत फिरो बदेश पियो कत पाईए हर हां जे मस्तक होवे भाग ता दर्श समाईए दिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया बदहो पुरख बधातै ता तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप राम दास पुर हर हां नानक कसमल जाहि नाया राम दास सार चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसे कहो आहिए बन बन फिरते उदास बूंद जल कारने हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहार ने मित का चित अनूप मरम ना जानी है गाहक गुनी अपार सो तत पछानी है चित है चित समाई ता होवे रंग घना हर हां चंचल चोर है मार ता पावे है सच धना सुपने उभी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावने हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावने वैदा संदा संग इकट्ठा होया औख दियाए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरे।

की दम के हो होती साठ रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जानी मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जार।

चरण चितव मन माहि, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहि। लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम, चंदर बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों, खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों, सूद न सिमरत अंग, प्रगट भयो।

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छाछ पिए संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बुलोया

अजो सोना उस समुंदर में क्या जानू क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट।

है कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाए कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

शरीर थोड़ा जल माछुली चीवर में ले ओ जाल ए टोगने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते पलो।

की कुकर पली साकत की बुरी माय ओ नित सुन हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाय कबीर।

होर काया हांडी काठ की ना उह चढ़ वो होर। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदोहरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसी है गुण को मरिया रोए, अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय। कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत है अपनो अदमहाज।

या कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचों लड़के मार के रह राम लियो।

पति पकारे चेह चढ़ी सुन हो वीर मसान लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दह दिस जाए जो जैसी संगत मिले।

रहम हुए चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूं ना पाया ठोर। जिन हर का नाम ना चेते हो

आए जिन हर का नाम ना चेतेओ बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की अवरै आस नरास नरक पर है ते मान।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जिह जिह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते

आई सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने काय कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओही राख नार गद ही हुई कै अवतर पार सह मन चार कबीर चतराई अत कणी

कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

रहो हरख गुन गाय। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बच रह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों

रात जो नर बिसरे राम सिंह ना दिन मिले ना रात कबीर रह नायर बिछोरिया रहो रे संख मचूर देवल देवल ताहड़ी देस है उगवत सूर कबीर सूता क्या करह।

की स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार। इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागज की ओभरी मस के कर्म कपाट। पाहन बोरी प्रथमी

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यो ज्यो भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कांठे रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा ताम कबीर साकत ते सूकर भला राखे आछा गांव ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लै है नाम कबीर कौडी कौडी जोर कै।

बार बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बात का ताज मन का अपमान, ऐसा कोई दास हुए काहे।

होए, ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए, ताते भली मधु करी संत संग गुण गाए, कबीर पाटन ते उजर भला

पुरा पूजह नारतन करोड़ कबीरा एक चंपो देखियो हीरा हाट बकाय बनजन हारे बाहरा कौडी बदले जाय कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां

कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया, शब्द जो बाहया एक लागत ही भुए मिल गया। परया कलेजे शेक कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मह चूक। अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गै बाहन सगन घन, छत्रपति की नार, ताश पतंत्र ना पुजै,

दै हाथ, जब ही पाई है पारखू तब ही रन की साठ। कबीर काम परे हर सिमरिय ऐसा।

असंत मलयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जान नाही कोई कै जान आपन तनी कै दास दिवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पानी।

के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जह अनपौ तह पै नहीं, जह पौ तह हर नाही। कहियो कबीर बचार कह संत।

तास चोट सहारे शब्द की, तास गुरु मैं दास, कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है, साई ना बहरा होए, जा कारण तू बांग दे, दिल ही पीतर जोए, सेख सबूरी बाहरा, क्या हज काबे जाए, कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहां खुदाए, कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जेहे सिमरत

कबीर गुर लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपै आप। कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतकहार। कबीर रामे राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह में।

आई ते कर मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार कबीर निर्मल बूंद

आए कबीर हज काबे हो जाए था आज्ञा मिलया खुदाई साई मुझस्यो लर परया तुझे किन फरमाई गाय कबीर हज का

है जोर कर, कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है, होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जो बाब खदाई।

मान में पल्ला ना पकड़े कोई, कबीर धरती अर आकाश में दोए तू बरी आवद, हट दर्शन संसे परे हर चौरासी ही सिद्ध, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं।

हुआ मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू कबीर बिका।

अस कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलई जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परापूर्व ली भावनी प्रगट होई आए कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवा कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती पार ना

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे सी पोषाय ले राम ना लावो चीत नामा

फिर कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करै या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करै जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सला।

नाम जानियो नहीं पालियो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब कबीर आखी केरे माटके

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाइए ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे

लोहिन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाही आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोयन क्यों करो सब घट देखो पियो।

आमन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पचमुआ, चारों बेदोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। हे नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करह, ताको बड़ो अपाग। सलोक सेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ है धन वरी।

कितनी जोबन प्रीत बेन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजे सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गई एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहो केरे कम। फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों डिठो कड़ियाल, एहो न दोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए मारी है पहरी लह सजाय, सोहेड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी रहन विहाय। बुढ़ा

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी।

वत कुवारी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारण जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिनी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चलसी थके कवल अकल फरीदा इट सराने भोए सौन कीड़ा लड़े ओ मास केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरीसता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी

करे। फरीदा दुखां सेती देह गया, सूणा सेती रात, खड़ा पकारे पातनी, बेड़ा कपरवात।

मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले, मैं मिलिया सुख हुई फरीदा जे तू मेरा हुई रह, सब जग तेरा हुई कंदी उत्तर रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर, फरीदा महल न सखण रह गई वासा आया तल गोरां से निमाणिया।

नानक घर ही बैठिया सहो मिले जे नियत रास करे महला पंजवा फरीदा गर्भ जिन्ना बढ़ियाईया धन जोबन आगाह खाली चले धनी सियो टिब्बे ज्यो मेहा फरीदा किन्ना मुख डरावणी जिन्ना वसारियों नाऊ ऐथे दुख कनेरिया अगे ठोर ना खां फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जे बंदड़ो मोयो जे ता रब वसारिया ता रब ना विसरियो महला पंजवां फरीदा कंत रंगावला वड्डा वे मोहताज अल्लाह से तीरत्या इहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख एक कर दिल ते लाहे विकार अल्लाह पावे सो भला तां लभी दरबार महला पंजवा फरीदा दुनी बजाई वजदी तू पी वजह नाल सोई जियो ना वजदा जिस अल्लाह करदा सार महला पंजवा फरीदा दिल रखा इस दुनी स्यों दुनी ना कितै कम मिसल फकीरा गाखड़ी सो पाईए पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पछा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात दाती साहिब संधिया क्या चले तिस नाल एक जागन दे ना लहन एक ना सुतिया दे उठाल टूडें दिये सुहाग को तौ तन काई कोर जिन्ना नाउ सुहागनी इन्ना चाक ना होर सबर मन कमान ए सबर का नीहणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन एवै जलेन होण नजी को खुदाई दे भेत ना किसै देन सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दिड़ कर है वध थी वह दरियाओ टुटना थी वह वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किन्न चालिए दरवे सावी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह प्री मिलन तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हों टुनेंदी सजना सजन मैंडे नाल नानक लख ना लखिया गुरमुख दे देखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाऊ डुब मुवे बग बपड़े सिर तल उपर पाऊ मैं जानिया वड हंस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हौ करी जित वासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर तां वासे आवी कंत मत हुंदी होए आणा तान हुंदे होए नताणा अण हुंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिक्का ना गलाए सब

बल बल सद बलिहार अमृत परवाह सर अतुल भंडार भर परै ही ते परै अपर अपार पार आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओपत परलो एकै निमक तो घर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहि नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जीहि क्या बखानै हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल भवन धारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहे हो श्रभ।

आप ही तारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाना हां की बल बल बल बल सत बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पियो अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दारी।

अकार अकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहि कृपाल सो जन प्रभ तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिय दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिय अमृत हर को नाम लैक मन सब

प्रसन्न भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसे हो तिन सब कुल कियो उदार सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप

पिंड सर्व सुख तिन्हु पाए, हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बहुड़ फिर जोन ना आए। कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान, कवन बिद उस्तत करिय, सिद्ध साधक ते तीस कोर।

जग पव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाऊ भगत एहो मन ठहरावे बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगत सगल हर पवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

मद माता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हतानी।

अवधारण सौ चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तौ मूर्त करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पौ सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यो रौ रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार करी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप बूजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपन।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नांग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख उल्टत जात बिरख की शारु दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहु अगम अपारु श्री पतनाथ सरन नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई।

सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरी होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत

सगल घस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझ समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परियो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परियो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरियो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसियो जम दूतन दन मृत मरियो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरियो है प्रेम भगत उदर है से नानक कर कृपा संत आप करियो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्स मग पावक जरियो ना जात रहियो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चलह हर पंथ पग नानक रोग दुख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु भांति विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत।

दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब

साध सदाधिक मुन जन गावे है अशल चला गावे गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावे है कपलाद आदि जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावे जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावे है गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावे है सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखानियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जुग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल।

सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थु सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथु ता धरियो मस्तक हथ।

वर्ज पंच भूत एक कर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रथ उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत धार काल पखन उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार उए जो सेवह शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर भाव उतार किए निरपार सत

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार कैता हदरत पायु मान सेविया गुर परवान साध अजगर जिनकिया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानिय अकल गत गुर परवान जा।

नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालक धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

सारी जिन भगत भवजल तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्व सिद्धि काव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अमर।

जय कुब अर्पश्चम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अम्बरीक भवजन तरिया।

सर्व छे दर्शन आशासै भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत भवजन हरन गुरु अमरदास तै पायो नाम त्यावह देवत तीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारी जह नाम समाधि।

अमर गुर तुस दियो करतार। सत सूरो सीर बलवंत सत पहाए, संगत सघन गुरु मत निर्वैर लीना। जिस धीरज धुर धवल तुजा।

नाम रस खान हर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी कुल संभू समुद्धरे पायो नाम निवास सके अठ जन्म कल उचरै गुर परसेउ अमर प्रगास बारज कर दाहिणै सिद्ध सनमुख।

अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सच्चौ कर्म काल जोड़ कर त्यायु परसे हो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सके अथ चरण गुर अमल पवल रह हाथ ता पर सके अथ हाथ लगे है गुर अमर पै जी ता पर सके अथ जी गुर अमर पणिजै नैन ता पर सके अथ नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो सिर

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुरु अमरदास परसीय अपौ लबे गौ चुकह। एक बिन दुगण जो तौ रह जां समंतर मान वह लह। जाल पाप दारत इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिलह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहियो। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमण बखाणो। जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो। बोहिथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल अधरन। गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कलातार जग मह परवरियो। निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो। जह कह तह परपूर शब्द दीपक दीपायो। जेहे सिख है संग्रहियो तात हर चरण मलायो। नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहने संग हो। गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो। जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है। सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है। भगत भाई परपूर हृदय उचरै करतार है। गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार। नानक कुल निम्मल अवतरियु गुण करतार उचरै। गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरि।

शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै दीश हुक्म

डिठे सन्यासी तपस्य है मुखों ए पंडित मिठे वर्ष एक हों फिरियो किने नहो पर क्यों लायो कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगी।

सनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच

इव जोधकार कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब

निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जनह की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अवनासी अवगत ते आयो तिस भेटे दारिद्र ना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे अमह नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमह अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह मन मज्जन

कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सर अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै संजम सत संतोख सील सनाहुम फुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो गुरु रामदास कल उचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरे।

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भये सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै।

पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणी एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द रिद बीचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान।

ज्ञान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तोवे जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे हैं।

अहंकार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्या

पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रि भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण माणिक करै ज्ञान गुर कहो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

गुर कर शब्द सुपुन अग्न कटह सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखियो नहो कियो ते अकियत संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत

भूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो भिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यों जो दहं दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे का।

सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख है त्याई है अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यों ता सब सुख इत उत तुम बंचो ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाई है हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्बाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है।

जी धारुहु मानस जन्म देह निस्तारुहु गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म।

नाम अखै निध अपियो, अपियो हर नाम अखै निध चहु जुग, गुर सेवा कर फल लहियन, बंद है जो चरण सरण सुख पाव है, परमानंद गुरमुख कहियन, प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखण भरन, सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारन तरन, जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है, कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल, गुरदर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुरदर्शन, परसन परम पवित्र गति, जीता है जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन शिव गुर ज्ञान रते, रघुवंश तिलक सुंदर।

जग जन्म मरन भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन करन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभाते है कर है इशनान इशनान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु।

देख रूप अत अनूप मोह महामग पहे किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि।

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

मूर्त दमन सकल पवन कुशल कर्ण सर्व भूत आप ही दिवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जन्म कर्म माच काच।

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित।

मतरापन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर

दूर कर देखो। दर्शन गुरु सगल सुख सागर, जां को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग। कबहू का को पावै आत्म परगास को, वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको। शिव मुन गह नात जात कबलास को, जां को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप। जटा जूट भेख किए फिरत उदास को, सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी। नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को, नाम निदान ध्यान अंतरगत। तेज पुंज तिहों लोग परगासे, देखत दर्श भटक भ्रम भजत। दुख पर हर सुख सहज बिगासे, सेवक सिख सदा अत लुभित। अल समूह जो कुसुम सुबासे, विधह मान गुर आप थपयो थिर।

गुर हाथ तीन भवन भरपूर रहे ओ सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी अचल अजोनी संभव पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समर्थ सदा सोई सर्ब जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जो गण अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर भणंग तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनं बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो जेहे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेहे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेहे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जेहे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावे सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जेहे सतगुर लग प्रभ पाई सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन

देखत अत हुए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानियो, कीनी भगत प्रेम लिवलाई। तांते अंगद अंग संग भयो शायर, तिन शब

लोभ अपमान स्यों झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर बंध्यो सिख तारी सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

मत ब्रह्म पछाणियो काल जोड़ कर सुजस बखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दिरड़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनपहो ठहरायो जनक राज बरताया सत युग आलीना गुर शब्दे मन मानिया अपती जपतीना गुर नानक सच नीम साज सतगुर संग लीना गुर अर्जन घर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गूड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो अजोनी संभवियो सुजस कल कवियन बखाणियो गुर नानक अंगद वरियो गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जुन वरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजुनी संभव कह भंजन पर दुख निवार अपार अनंपो अगह गहन भ्रम भ्रांत दहन शीतल सुख दातो असंभो उदव्यो पुरख पूर्ण बेदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मलायो जय जय कार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड़ भागी।

तो हे जस बक्ता कुल सोडी गुर राम दास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नान खुटै गुर राम दास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु माणियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर

मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आद पुरख प्रताख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज।

देखियत ताम स्यो अपार परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गुर भगत कै हेत पाई रहो मिन राम स्यो अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माही तरी जग और न जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुंदर

अवतार बनायो जप्यो जिने अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल।

या किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैन अपार पहला

पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाही पहु नानक दुनिया कैसी होई सालक मित ना रहयो कोई।

निर्मल नावन नानका गुर तीरथ दरियाऊ जन्मे का फल क्या गणी जहां हर भगत ना पाऊ पैंदा खादा बाद है जहां मन दूजा पाऊ वेखण सुनना झूठ है मुख

जो देवे सो देवे नाही, खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे, काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां, जैसेती मेरा संग।

रह सदा सदा सुरती ही पत होए सर्फ है सर्फ है सदा सदा एव गई विहाय नानक किसनो आखी है बिन पुछिया ही ले जाए दोष ना दे ओ राए नो मत चले जा बुढ़ा होए गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तो है पूरे का किया सब कुछ पूरा काट वा

मोहनी अंतर तिसना अग जिन्ना वेलना तू बड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई है ना मिल ही वग साग आप भुलाए भुलिया आपे मेल मलाए नानक गुरमुख छुटिया जे चले सतगुर भाई साला ही सालाहना ही सच्चा सालाही नान

जिवे है मन चढ़िया दसवें आकाश किथे ऊंग ना भुख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा

अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया। एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई। बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई। जोबन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई। पुत कलात्म

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करहे विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा। हौ सद बलिहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ता का दास, माया पोयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिन को पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल।

माहे, नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताहे, चिंता तावत रह गए, ता मन भया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है, सा तन सुती निचिंद, जिनको

जन सिज्जे बिन शब्द मुक्त ना होई, भेख करह बहु कर्म बगुत्ते पाए दूजे परज विगोई, नानक बिन सतगुर नाउ ना पाईए, जे सौ लोचे कोई, हर का नाउ अत वड ऊंचा, ऊंची हूं ऊंचा होई, अपड़ कोई ना सकई, जे सौ लोचे कोई, मुख संयम हच्छा ना होवे, कर भेख भवे सब कोई, गुर की पौड़ी जाए चढ़े, कर्म प्राप्त होई, अंतर आए वसे, गुर शब्द विचारे कोई, नानक शब्द मरे मन मानिए, साचे साची सोई, माया मोह दुख सागर है, बिख

बहु चित्तवदी बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी मर बिन सजाई खिनवार।

अंत काल तिथै तो है जिथै हाथ ना पाए मन मुख सेती संग करे मुहे कालख दाग लगाए मुह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम बसै मन आए जन्म मर

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट कर।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह। दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान। मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही। विच हऊ मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही। गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुभाई। ओना मैल पतंग ना लगई, जे चलन सतगुर पाई। मनमुख झूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाई। नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाई। बुरा करे सो केहा सिजै, अपने रोहे आपे ही दज्जै। मनमुख कमला रगड़ै लुजै, गुरमुख होए इस सब किस सुजै।

जीव सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किन विख पाप सब कटी है हौ मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

बूंद पवै सहज सुभाए, जल ही ते सब उपजै, बिन जल प्यास ना जाए, नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागै आए। बाबी हा तू सहज बोल, सच्चै शब्द सुभाए, सब किश तेरे नाल है, सतगुर दिया दिखाए। आप पछाण है प्रीतम मिले, वुठा शहबर लाए, चिम चिम अमृत वरसदा, तिसना भुख सब जाए। कूक पुकार ना हो गई, ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सुख समन सुहागनी, सच्चै नाम समाए। तुरों खसम भेजिया।

पास सतगुर मिले जल पाई है चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोए हर गुठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै चाल चाल चलंबलै

जोग पाइए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे पवह वेद पढ़ह जोग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागिया सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाय वाहो वाहो सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतर तन मन शीतल होए वाहो वाहो सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाहो वाहो सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाहो वाहो सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाहो वाहो सतगुर।

नानक सतगुरु वाह वाह जिसते नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूर्ण

कर्म कर नानक लेहो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

हुक्म अरादि हुक्मी समय समाय हुक्म वर्त नियम सोच संयम मन चिंदिया पल पाए सदा

आए मानमुख हुकुम ना बुझे बपड़ी नित हों मैं कर्म कमाए वर्त नेम सोच संयम पूजा पाखंड भरम ना जाए अंतरोह कसुद माया मोहे बेदे ज्यों हस्ती शार उड़ाए जिन उपाय तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करतै पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत।

हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हों फिरा पी हिरदै रखा संभाल जिन्ना एक मन एक चित

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग नाद।

गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौमीन। बिखियन स्यों काहे रचियो निमुख न होए उदास। कहो नानक भज हर मना परै न जम की फास। तरन आपो इउं ही गयो लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं

निस दिन जो नानक भजे सफल होहे ते काम। जिह बागुन गोबिंद भजो करन सुन।

नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान। हर जन हर

निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चितर ज्यों, छाडत नाहिन पीत, नर चाहत काचे और है की और है पई, चितवत रहे उठ गौर, नानक फासी गल परी, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए, कहो नानक सुनरे मना, हर पावे सो होए, जगत पिखारी फिरत है, सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते, पूरन होवे काम, झूठे मान कहाँ करे।

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल बढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक।

तिनका पौ सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सलाहंतु जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब तप है जपे बेंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तो जेवड अवर न कोई, तू जो जोगे को सदा सदा तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तुदे आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करे सो होई, तुदे आपे सृठ सब उपाई जी, तुदे आपे सृठ सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सत्यार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लद्दा मन मुकवाया, तू आप छोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ तब तुझ ही माघे, तुझ बिन दूजा कोई नाघे, जी जनसर तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनु तू जाना है, तो ही जन जाने, हार गुण सदगी आख वखा।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कमण सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल कर कर एहो पव।

मद देख पूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पौन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी खिर में खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से विजोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

पाईए जा हरना वस्ते मनमाख गुर मिले सुख पाईए अगन मरे गुण माख मन रे अहे इन सहर गुण सार जिन खिन पलनाम न विस्तर है।

कीना सुने ही गोरिये आपन कन्नी सोए लगी आवे सौरे नितन पे या होए नानक सुती पेई है जान वरती सन गुणा गवाई गंटड़ी अवगुण चली बन तिरी राग महला पहला कर दूजा आपे रसिया आप रस आपे रामनहार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंगता मेरा साहेब रावरया परपूर रहाव आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बदरंगला सखिये मेरा लाल नेत्र वे सुहागणी देख हमारा हाल प्रणवे नारक बेनती तू सर्वर तू हंस तौर तू है कविया तू है आपे वेख विरस

कंड राजकुमार बिन सतगुर सुख न पावई, फिर जूनी पाहे। हारे हार कंठ जी ने पहरिया, कुरचरणी चितलाए, तिना पिछे रिद सिद फिरे।

से निर्मल हौ सदबरेहारे जास हृदय जिन के हर वस तेत कट है प्रगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याय तुर मस्तक जिन को लिखया से गुरमुख रहे लिवलाय रहाओ हर संतो देखो नदर कर निकट बसे भरपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देख सदा हदूर जेन गुण तेन सद मन वस अवगुणवंत्या दूर मनमुख गुण ते बारे बिन नावे मरदे चूर जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्याया घर सोए अन दिन भगती रतया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओ सदा सदा फिर होए यो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम न चेते लिवलाए पाग खिसे रहना नहीं आगे ठौर न पाए ओ वेला हथ न आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उबरे हर से ती लिवलाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है सेव पई तनताए हर गुण गावे हर नित पड़े हर गुण गाए सुमाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम ते आया गुरमति विचार तिनके मुख सद उजले तेत सच्चे दरबार वे अमृत पीवे।

अमृत सत्या नाम है, कहना कछु न जाए, पीवत हू परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

दरगह मिले सजाए, मान रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सो पाए। अरहाओ सच बाणी सच शब्द है, जहां सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे हम में क्रोध निवार, मन निर्मल नाम त्याई है ता पाए मोख द्वार, हम में विच जग बिरसदा मर जम्मे आवे जाए, मन मु शब्द ना जाननी जसन पद गवाए, गुर सेवा नाओ पाई है सच्चे रहे सुमाए, शब्द मने गुर पाई है विचों आप गवाए, अनदन पगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वसया नानक सह सुमाए। श्री राग महला तीजा, जिन्नी पुरखी सदगुर ना सेवयो से दुखिए जुग चार, कर हुंदा पुरख ना पछाणिया अभमान मुठे अहंकार, सदगुरु क्या फिटकया मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवयो अब काज सवारण हार, मन मेरे सदा हर वेख हदूर, जन्म मरण दुख पर हर शब्द रहा परपूर, अरहाओ सच सलहान से सच्चे।

क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए, एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए, मन मेरे अनदिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले ऊंज पड़ेगी खेत, हरहाओ मन की इच्छा पूरियां शब्द रहा भरपूर, पए पाए भगत करे दिन राती हरजू वेखे सदा हदूर, सच्चे शब्द सदा मन राता रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी धीर, जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए, सच्चा शब्द ना पछाण्यो सुपना गया विहाय, सुन्ये कर का पौना ज्यों आया त्यों जाए, मानव जन्म बिरता गया क्या मोदे सी जाए, सब कुछ आपे आप है होमे विच कहन ना जाए, गुर के शब्द पछाणिए दुख होमे विचों गवाए, सतगुर से मन अपना हों तिनके लागो पाए, नानक दर सच्चे सच्यार है।

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोय, सच मिले से ना विछड़ै, नानक गुरमुख होय। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा अलख न लिखया जाए। आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब थीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए, जां आपे नदर करे, छे जन सब दे सोने, ते सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते, आव मेले करतार, गुरमती सच सलाना, जेदा अंत न पार आवार, धड़कड़े आपे हुकम से, हुकमे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है, हउमे विचों कोय, सातल नावे बारी, अवगुणवंती रोय, सच सलागी सच लगा, सच्चे नाय तृप्त हो।

आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जले सुमाए त्रि राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला केत बिद मिले रसकाए जाय पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिलया प्रव्याय कोई वे प्रवाह ना बोलनी हो मरमल धोवा तिन पाए भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार सज्जन सद गुर पुरख है दुख कड्ढे हो में मार हरहाओ गुरमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुर वजनर तन है जो मने सो हर रस खाए सेवड भागी वड जानिए जेन हर रस खादा गुर पाए इहो हर रस वणतन सबत है पागहीन नहीं काए बिन सतगुर पले ना पवे मानमुख रहे बिरलाए कोई सतगुर आगे नानवे उन्ना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत तोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसया मन सोए।

लाज रुकाए गुर मिठा माया पसरिया मानुख लग माकी पते पचाए भाई रे मैं मीत सगा प्रसोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई न होए हरहाओ गुरमत हर ले उबरे लिप्त रखे सरणाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पद पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप लय गल लाए गुरमुखा नु पंथ प्रगटा दर ठगन कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लवलाए अरख तुनी दर वज दे दर सच्चे सोभा पाए जिन्नी गुरमुख नाम सलाया तिना सबको कहे साबास इनकी संगत दे प्रभ मैं जाजक की अरब

गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग अरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता तो प्रमणो ना विसर जिन सब केश

संग समाओ हर जप के आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग मोहल्ला पंजवां प्रीत लगी तेस सच स्यो मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत

मेरा निर्मल इस दिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए, चारे कुंडा पालियां सहबन अवर ना जाए, इस आगे अरदा

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए एना, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, तू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी, तू वड़ पुरख सो जाना। रघाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत् समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही। कैन कहामन यो कीर्त करला, कथन कैन ते मुक्ता, गुरमुख कोई विरला। गात अवगत कछ नदर न आया, संतन की रेण नानक दान पाया।

नहीं, जिन दिता आत्म दान आए से प्रवान है, जिन गुर मिलिया सुखाए, सच्चे से तीरत्या दरगे बैसन जाए, करते हाथ वड़ियाईया पूर्व लिखया पाए, सच करता सच करन हार, सच साहेब सच टेक, सचो सच वखाणीए।

गुण गाओ, सच खाना सच पहनना, सच्चे सच्चा नाओ, साध ग्रास ना विसर, सबल मूर्त गुरे आप, गुर जेवड़ अवर ना दिसई, आड़ पैर ते जाप, नदर करे ता पाई है, सच नाम गुण तास, गुर परमेश्वर एक है, समय रहया सुमाए, जिनको पूर्व लिखया।

पाए, गुर राखे से उबरे हाथे सुन लाए। हर जीव शब्द पछाणिए साजर ते गुरवाक, तेत तन मैल न लग गई सच कर जिस ओ ताक। नदर करे सच पाईए बिन ना वेख्या साक, जिन्नी सच पछाणिया छे सुगिए जू चार। होमे तिसना मार के सच रखिया उर तार, जग में लहा एक नाम पाई गए गुर विचार। सचो वखर लदिए लाभ सदा सच रास, साची दर गए बैसई भगत सची अरदास।

आवे रंग सच सुहागन सा भली फिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ू गुर जाओ बन में भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चक्कर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए नानक एक और अवर दूजा अवर न कोय श्री राग मल्ला पहला गुरते निर्मल जानी है।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रवसा दीप अनूप जोत तिर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोटड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पय पंजना देख नरंजन पाए, गुप्त प्रगट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुग मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भक्ति पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाणे कर।

मारो वार, सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरबिन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला, बिन पिर तन सी गाईए जो बन बाद खुआर। ना माने सुख सेजड़ी बिन पिर बाद सीगार, दू कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मान रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए। हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार, सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार। गुरमुख जान स जानिए पुर मिली गुण चार, सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए। मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए, हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता पिर रावे नार, एक तागे राल मिले काल मोतियन का हार। संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए। शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए, साहेब अतुल ना तोलिए तस न पाया जाए। वा पारी बन जा रहा आए वजो लखाए, तारक मावे सच की लाहा मिले रजाए। पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए, गुरमुख तोल तुलाए सी सच तरा जी तोल। आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल, आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल। कसने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है

रहे बक्से पवित भंडार रहाओ रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अल को तो सुकनो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अव पीर रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थर हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म मिले सो पाईए किरत पया सिर देह अरे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटने आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वडियाई दे अरे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणामणी तरता करे सोहोए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा रहो न टुटे जे सर गुर पेटे सोए ज्ञान पदार्थ पाईए

नाम तन निर्मलो गुरदाद करे प्रसोय रहाओ। राम नाम तन निर्मलो जे देवे दे मनहार आगे पूछना हो वही जे बेली कुर करतार। आप छिड़ाए छुट्टिए आपे बख्शन हार मन गुजाने अपने धिया पूत संजोग नारी देख विगासीए नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग चित लेवित जामणु सागत डोल डोलाए बार टूंड गुचीए कर्म वस्त सुधाए मन बखोमे कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए। साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रगत बिंद का इओ तनो अग्नि पास पिराण पौने के वस देओरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगीए मुआ न लोड़े कोए सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए नाम हूने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए ज्यो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए गुरमत होए विचारिए सुबना एव जग लोए अग्न मरे जल पाईए ज्यो बारक दूधे माए बिंदल कमन सो नाथिए

ना पौड़ी तित तास, गुरमुख अंतर जानिया गुर मिलनी तरियास। पाई रे भवजल बिकम डराओ, पूरा सतगुरु रस मिले गुर तारे हरनाओ हरहाओ। चला चला जे करी जाना चलन हार, जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार। ही सच्चा सराहना सच्चे थान प्यार, दार कर महिला सोने पक्के कोड हजार। हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लाखे पार, इस ही नाल न चलिया खब खमुए असार। सोई ना रुप

सिद्ध बह देसदान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सिख पीर सलार तार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आमन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनु आखिए जिस सिस न होवी लेख असमार तरपी चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चले निस सा चले तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

क्या माया कर्म कुमाए, तो सुख ए जो बद है हम में कर्म कुमाए, पिन शब्दे परम न चूकई ना विचों हम में जाए, पिन प्रीति भगत न होवई पिन शब्दे थाए न पाए, शब्दे हम

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागणी जिन सय नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लए मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तब तक की कर्म कमाए जियो हों सतगुर विटों कुमाया जेन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जय अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए कर्म मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे न तत्ती वाओ जियो मैं मंत्र प्रभु ते आया जिये इछेड़ा फल पाया साथ पासा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस भावे तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया।

ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गए लीने हर जसो दीने जोन ना तावे न मरी सत गुरदयाल कृपाल भेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन ना जाए अकथ सुवामी।

या मन हर घर मुठड़ा है। मन हर घर जपन करे हर गुर सुनाई पज पो जिंदु साब केल विख दुख पर हरे हरहाओ। धड़कड़ रमैया मन मसे क्यों पाईए कित पत गुर पूरा सतगुर पेटीए हर आए वसे मन चित मैं तर नाम आधार गए।

जो मिलया हर दीवान स्यो सो सबनी दीवानी मिलया जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखुरु ओस कै मुझ डिठ सब पापी तरिया ओस अंतर नाम निधान है नामो परवरिया नाओ पूजिए नाओ मनिए नाए केलवक सब हिरिया जिनी नाम त्याया एक मान एक चित से अस्थिर जग रहया श्लोक महला तीजा आत्मा देव पूजिए गुर के सह सुपाए आत्मे नू आत्मे दी प्रतीत होए ता कर ही परचा पाए आत्मा अडोल ना डोलई गुर के पाए सुपाए गुर विण सहज न आवई लोभ मैल ना विचों जाए खिन पाल हर ना मन वसे तब अड़सर तीर्थ नहाए सच्चे मैल ना लगई मन लागे दूजे पाए धोती मूल ना उतरे जे अड़सर तीर्थ नहाए मन मुख कर्म करे अहंकारी सब दुखो दुख कमाए नानक मैला उजल तांथिए जा सतगुर मय सुमाए महला तीजा मनमुख लोग समझाइए कदो समझाया जाए मनमुख रलाया ना रले पया किरत फराए लिव ताज दो रहा है हुक्मी कार कुमाए गुरमुख अपना मन मारिया सबक सवट्टी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत मन ही मंज सुमाए मन जो इसे सो लै सचे सब सो पाए अमृत नाम सद पुंचिए गुरमुख कार कुमाए विण मने जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए मन मुखी मन हड़हारिया ऊड़क सत कुमाए गुर प्रसादी मन जने हर सेती लिवलाए नानक गुरमुख सच कमावे मनमुख आवे जाए पौड़ी हर के संत सुनो जन पाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हिरदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुरबचनी सहजे चाखी ते पया प्रकाश मिटिया अंधियारा जो सूरज रहन के राखी अदिष्टया गोचर अलख निरंजन तो देखिया गुरमुख आखी श्लोक महला तीजा सतगुर से वे अपना सो सिर लेखे लाए विचों आप गवाए कै रहन सच लिवलाए सतगुर जिनी ना सेवे हो तिना बिरथा जन्म गवाए नानक जोथ पावे सो करे ऐना किशु ना जाए महला तीजा मन वेकारी वेड़या वेकारा कर्म कुमाए दूजे पाए अज्ञानी पूज दे दरगह मिले सजाए आत्मा दे ओ पूजिए बिन सतगुर बूझ न पाए जब तब संजम भाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए नानक सेवा सुरत कमावनी जो हर भावे सो थाए पाए पौड़ी हर हर नाम जपो मन मेरे जित सदा सुख होवे दिन राती हर हर नाम जपो मन मेरे जित सिमरत सब केलख पाप लगाती हर हर नाम जपो मन मेरे जित दाल दे दुख भुख सब लहे जाती हर हर नाम जपो मन मेरे मुख गुरमुख प्रीत लगाती जित मुख भाग लिखिया तुर साचे हर तित मुख नाम जपाती श्लोक महला तीजा सतगुर जिनी ना सेवेओ शब्द न कीतो विचार अंतर ज्ञान न आयो मृत गए संसार लख चौरासी फेर पया मर जमे होए कुवार सतगुर की सेवा सो करे जिसनु आप कराए सोए सतगुर विच नाम निधान है कर्म प्राप्त होए सचरते गुर शब्द स्यों तिन सच्ची सदा

पौड़ी तू ऐसा हर नाम त्याई गए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए तू ऐसा हर नाम जप गए मन मेरे जो अंति अवसर लय छिड़ाए तू ऐसा हर नाम जप गए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए सो गुरमुख नाम जपया बड़ भागी तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नावे अगे आने वाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाने ना चले हुक्म करेगा वार गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट ना सकी है जो

राम तोड बंधन माया धर के कमलाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया कह बंध कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीते बहु पांत कर माया कहता ही जा लहा दे ता सुख मने टोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यो करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनर साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे जन नानक हर हस तृप्तया फिर भूख न लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हों कुर्बानी गुरे अपने जिन विछड़िया मिलिया।

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया।

डंडा है, हर जन हर हर नाम समान है, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहुत शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रातेरे, हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडा है, गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा, इस गढ़ में हर राम राय है।

गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा मत माता मत जियो नाम करामा संतोख पिता कर गुर पुरख अजरमा वड़पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गोर हा रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वड़पागी मिल सूड सुजानी जियो मेरा मन तनहा रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज मोहल्ला चौथा आओ सभी गुण कामन करीहा जियो मिल संत जना रंगमाणे रलिया जियो पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो हर तुठे टोल टोल मिलिए जियो मेरे मंत्र प्रेम लगा कर ढोले जियो मैं मेले मित्र।

गौड़ी माज मोहल्ला चौथा चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्यारिया हर प्रा मेरा चोजी जियो हर आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा हर आपे गोपी खोजी जियो हर आपे सब कड़ फूकदा मेरे गोविंदा आपे रसिया फोगी जियो हर सो जानना फुली मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगत उपायदा मेरे गोविंदा।

जियो, गुर सबदी पाई गए हर प्रीत मराओ जियो, वड भागी जपनाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रव्यासा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रापासा जियो, गुरमत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज मगला चौथा, मेरा बिरगी ना मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत घर लीवा जियो, मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा घर बाण जियो, मेरा प्रीत मित्र घर पुरख सुजान जियो, गुरमेले संत हर सुड सुजान जियो, हौ ना मिटो कुरबान जियो, हौ हर घर सज्जन हर मीत साई जियो, हर दसो संतो जी।

तू है मेरा गहना, तुझ निपुण जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवरे तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी सोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सागुर ते दृढ़या एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्रओर तुम्हारी रघाओ, व्याप्त अंगबुद का माता। व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता, व्याद हस्त कोड़े अर बस्ता। व्याप्त रूप जोबन मस्ता, व्याप्त भूम रंग अरंगा। व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज महल सीगार। पंच दूत व्याप्त अंधहार, व्याप्त कर्म करे हो फासा। व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त ए जात। सब व्याप्त बिना रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय। ताको खां व्यापे माए, ओ नानक जन तूर संत पाई। ताके निटन आवे माई, गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा। नैनो नींद हरदे टवकार, श्रमण सोए सुनंद विचार। दसना सोई लो मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साव तवस को अपनी लय रहाओ। सकल सहेली अपने रसमाती, गए अपने की खबर ना जाती। मुस्तनहार पंच बटवारे, तूने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न पाई। सर्व स्याणप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते। हर कृपा मुझ सारंग पान, संतन तूर सरबन धान। साध पूजनी सदगुर संग, नानक जाग पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेस सुभी होए रही है। ऐसा दाता सबगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रहाओ जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाना।

ते मोय असनाहा मीत हमारा अंतरजामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नान प्रा तेरे गौड़ी महला पंजवा जा को तुम पै समर्थ अंगा

चरण कमल आराध भगवंत हर सिमरत मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊच स्थान तरसे जे पायो दूध दर्द परम पव नसया करण हर नानक मन बसया गौड़ी मोहल्ला पंजवां कर कर टहल रसना गुण गाओ चरण ठाकर कई मार्ग थाओ पलो समो सिमरन की परिया सिमरत नाम पे पार उतरिया रहाओ नेत संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन में लेख सुन कीर्तन साध पै जाए।

एक टकाई। दुख बिन से सो घर गुण गाय, और पूरा पेटा लिवलाए रहाओ। हर का नाम दियो गुरु मंत्र, मिटे बसूरे उतरी चिंत।

स्वामी सब तुमते तू अंतर जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुगज वरते सब तेरा पाणा हुकम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दिस पाई गे वडभागी जाकी राम नाम लिव लागी जाके हर वसिया मनमाही ताको दुख सुपने पी नाही हर हाओ सरबन धन राखे जनमाघे ताके संग केल विख दुख जाहे जनकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे दास की तूर नान को दीजे गौड़ी मोहल्ला पनवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मने आए

रह जाए। बिन घर सिमरन सुख नहीं पाया, आरंग फीके सा माया, गुरंगे से पए निहाल, कहो नानक गुर पए है दयाल। गौड़ी मोहल्ला पंजवां, सिमर स्वामी किल बिखनासे, सोग सहज आनंद निवासे, राम जना को राम भरोसा, नाम जबत सब मिट्यो अंदेसा। रहाओ सा संगत पौ ना प्राति, गुण गोपाल गाय गए दिन राती, हर किर प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दिनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत।

की पाई, सोग सहज सांत आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, नाम रास सासंग खाटी, कहो नानक प्रभ अवधा काटी, गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत सा मिटे कलेस, चरण कम मन में परवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रह पीओ प्यारी रखाओ, सोग सहज रसमह आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए, साध के संग किलब सब थोए, हर कृपा प्रभु दीन दयाला, नानक दीजे सादर वाला, गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, इस आस क्यों बने माए, खमसार आन कम लागे, हौडी बदले रतन त्याग गए रखाओ, प्रभु त्याग लागत अन लोभा, दास सलाम करत का शोभा,

मनमय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोड़ जन्म की मल ले जाई रखाओ हर की कथा हृदय बसाई

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर सिंह राते पाए ना जले, हर सिंह राते माया नहीं चले, हर सिंह राते नहीं डूबे जला, हर सिंह राते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे

तू संग हमारे बह जियो रहाओ, कुछ बिन करी ना जीवना, त्रग रहना संसार, जी प्राण सुख दातया, निमक निमक बलिहार जी, हस आलंबन देव प्रभ, घर तो उदर गोपाल, मोय निर्गुण मत थोरिया, तू सदगी दीन दयाल, क्या सुख तेरे समला, हवन विधि विचार, शरण समाई दास हित, ऊंचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महार समाहे, हो प्रसन्न पै केसवा, से दिन हर गुण गाहे, माल पिता सुध बंद को, तू मेरे प्राण आधार, सा संग नानक भजे हितरिया संसार, गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हय कोई राम प्यारो गावे, सर्व कल्याण सुख सुध पावे, हरहाओ बन मन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी, जिन घर पाया से वडभागी, ब्रह्मादक सनकादक चाहे, योगी जति सिद्ध अर आहे, जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे, ताकि सरंजन बिसर तनाही, वडभागी घर संत मिलाही, जन मरण ते मूले नाही, हर कृपा मिल प्रीतम प्यारे, बिनो सुनो प्रभु पूज अपारे,

आयो शरण तुहारे, कर कर हारो अनक बो भाती, छोड़े कतहु नाही। एक बासुन ताकी ओटा, साह संगमन जाही, कर कृपा संत मिले मोए, तिनते तीर्ज पाया, संती मन दियो मोए निरपो, गुर का शब्द कमाया, जीत ले ओए महा दिखादी, सह सोहेली बाणी, कहो नानक मन पया प्रगासा, पाया पद निर्वाणी, गौड़ी महला पंजवा। ओ अबना सीर आया, निरपो संग तुम्हारे बसते, क्यों डरन कहां ते आया रखाओ, एक मैल तू होए अफारो, एक मैल ने मानो, एक मैल तू आपे आपे, एक मैल गरीब बानो, एक मैल तू पंडित भगता, एक मैल खल होता, एक मैल तू सब कुछ ग्राहज, एक मैल कछु न लेता, ताड़ की पुत्री कहां करे बपरी, खिलामन खा रोजाने, जैसा पेक करावे बाजीगर, ओ तैसो ही साजयाने, अंग कोठरी बहुत पात करिया, आप हुआ रखवारा, जैसे मैल राखे तैसे रहना, क्या यो करे विचारा, जिन किस किया सोई जाने, जिन ए सब साजी, कहो नानक अपरम पर स्वामी, कीमते अपने काजी, गौड़ी महला पंजवा। छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ, उर्ज रहो रे बावर गावर, जो किरखे हरे आयो पसुआ रगाओ, जो जाने तू अपने काज, तो संग न चाले तेरे तसुआ, नांगो आयो नांग सदासी, फेर फिरो अरकाल गरसुआ, पेख पेख रे कसुंभ की लीला, राजमाच तिनहू लो हसुआ, शीत डोर दिन सारैनी, जी को काज न कीनो कछुआ, करत करत एही बिरधानो, हार उते तनखी नसुआ, जो मोयो उन मोह नी बाला, उसते कटे नाही रुज चसुआ, जग ऐसा मोय गुरे दिखायो, तो शरण पर्यो ते गर्भसुआ, मार्ग प्रभु को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत घर जसुआ, गौड़ी महला पंजवा। तुझ बिन कमन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा रगाओ, अंतर की बेद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले, सरसु का मैं तुते पाए, मेरे ठाकुर अगे अतोले, वर्ण न साको तुम रे रंगा, गुण निदान सुख दाते, अवे गोत्र प्रभ अविनाशी, पूरे गुर ते जाते, प्रम को काढ़ किए ने केवल, जपते हो मैं मारी, जन्म मरण को चूको सहसा, सा संग दृसारी, चरण पखार करो गुरसेवा, बार जल लखबरिया, जे प्रसाद यो पोजल तरिया, जन नानक प्रेसंग मिरिया, गौड़ी महला पंजवा। तुझ बिन कमरी जावे तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही रगाओ, सुर्ग पयाल मृत भूमंडल, सर्व समानो एक ओही, शिव करत सगल कर जोरे, सरमया ठाकर तेरी दोही, पातक पावन ठाकुर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल शीतलोही, ज्ञान क्या नानक वडियाई, संत रेसों गाल गलोही, गौड़ी महला पंजवा। मिलो प्यारे जिया, प्रभु किया तुम्हारा थिया रगाओ, अनक जोन बो जो नी प्रमया, बौर बौर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मान खुदे पाई है, देहो दर्श घर राया, सोई हुआ जुस पाना, अवर न किन ही कीता, तुमरे पाने परम मोहि होया, जागत न ही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पद प्यारे, कृपा निध दयाला, राख लेहो पिता प्रमेरे, अनाथे कर प्रद पाला, जिसनु तुम्हें दिखायो दर्शन, सा संगत कै पाछे, कर कृपा तूर दियो संतन की।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी है जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे

पर शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेत्र को थाओ ना है बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्ति।

आदो यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर न रहाई, रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई, रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछना बसाई, जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तौ सब विद बन आई, गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काए गवाव और हाओ, पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ, गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो, ताज अब महान।

माया मोह महासंकट बाण तास्यो रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो निहो न लावे नानक मुक्त ताहे तुम मानो जे कड़ राम सुमावे गौड़ी मोहल्ला नावा साधो राम शरण बिसरामा वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को।

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त इकनाई, तही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई।

एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एक हुकुम वरते सब लोई, एक ते सब ओपत होई, रहा दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुकुम पछान, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बीचार है, पंच मार साच उरथार है रहाओ, जिसके अंतर साच बसावे, जो जुगत की कीमत पावे, रस एको गृह उद्यान, करणी कीर्त कर्म समान, एक शब्द एक भिख्या मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सज जाग, पाए रच रहे न बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की

मन त्रिवतास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर तिर पवन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्व किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्व बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्व निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे वो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेव, बिन गुर अंत न पाए अपेव, आप पुलाए आपे मत देव, दुर्मत हरनाश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्व गया बिन सदगुर हेत, सहस बहु मद कीट में खसा, हरनाश ले नहो बेदासा, दय संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साज भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम न चीन्या अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुनोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित कुवारी, दार कर महिला से सुखाली, तैनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहां सच पाओ, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, पर पंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाए मिले मलत होई रहाओ, उन्दो कावल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बेनासे सगल विकारी, पात मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख शूड़स

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भोर नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे ना लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख।

किसे मुकाम सा मरे संते माया दाम मैं तन दीजे हर अमृत नाम रैयत मैर मुकदम सिगदार निचल कोई ना दिसे संसार अभरो काल कूड़ सिर मारे निचल एक सच्चा ससोई।

ले आप हो जाओ। मनमुख सूत को कहे न जाए, जिचिर शब्द न पीजे हर कहे न आए। रहाओ सबो सूत के जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न काए। शास्त्र सिमरत सो देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख शोभा साज द्वारा। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो होमे जाए, गुरमुख मैल न लागे आए। गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुखोई। अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुखोई, मनमुख डंप बहु चतराई। जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजो लाए बहे नृत्याना। जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पद नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। नानक बिन नावे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। एथ अगे हर नाम सिखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुर प्रसादी मैल उतार। रहाओ वाद विरोध न पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। गुर के शब्द सच ले लाए, हौ में मैला एओ संसारा। नित तीर्थ नावे न जाए अंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुवारा। सोजन साचा दे हो में मारे, गुर के शब्द पंच संघारे। आप तरे सगले कुल तारे, माया मोहे नट बाजी पाई। मनमुख अंदर है लबटाई, गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर से न फिरे अंकारी। आप न चीने बाजी गारी, कापड़ पैर करे चतराई। माया मोहे अध परम फुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, गृह अंतर साच लिवलागी। नानक सतगुर सेवा से वड़भागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तेते उपजे दे मोह प्यासा। त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम घर राखे सदगुरु मिलाया। अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवदल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे। जम का गल जेवड़ा, नितकाल संतावे। गुरमुख जम काल ने

पद पाईए नाम मने सो होय सगुर ते नाम पाईए धर्म मिले प्रसोय सगुर ते जो मोह पेरे ओए भ्रम दे ना टिकन तरत असमान ना चलई विच विचता पए पचन यो जग परम भुलाया मोए ठगो ली पाए जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए सगुर सेवन सो सोने होमे मैल गवाए अवदरते से निर्मले चले सतगुर पाए हर प्रदाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए जन नानक शरणागति जो पावे तवे छिड़ाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हले एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर हले मन परदेसिया क्यों मिल गए घरमाए गुर पाग पूरे पाया गल मिलया प्यारा आए मन कर हला सतगुर पुरख ते आए हरहाओ मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए जिथे लेखा मंगिए हर आपे लय छिड़ाए।

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निवाह।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, हरहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

सखा हर जियो गुर पुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री तार त्यों मिले तुझे उड़ीनिया तर करे सेवा शीश चरणी मन आस दर्शन मानिया सास सासना कड़ी विसरे पल मुहूर्त दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे।

तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीर है। गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है, फिर दोष नाही सुख दाते हो मिचड़ी बुरियारे। बिनवंत नानक दया तार हो तार आव हो ना प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा, हो सिर अर्पी जमीत प्यारे। जो प्रादे संदेसा अर्प्या ता शीस सुथान गुर पै, तंग प्रभु दुखाया खिरमाए सगला दुख मिटया। मनो चिंदया पाया दिन रैन रलिया करे कामण,

के मोहे न बुझे तो प्रभ सदगु संग लेख गणत न छूटी है काची पीत न शुद्ध जिसे बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो रते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कहे न को आओ बैठ आदर शुभ देव वा मेल नहीं पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्त कर्म लिखे तुर जाके हर संप नानक करता के श्लोक लालच चूड़ बेकार मोह व्याप्त मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बेखे रस राते अंग बुद्ध माया मद माते या माया में जन्मे मरना ज्यो जो हुक्म तेवे त्यो करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गहर गंभीर अथाह दूसरा ही अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एक आप अवर न हो वनहार हो सद आया ओवा का अंत न काहू पाया पीठ हस्त में पूर समाने पलट पुरुष ठाऊ जाने जाको दीनो हर से अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना श्लोक आत्म रस से जानिया हरंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सबल ताऊ को गनिये जास रसन हर घर जस पनिये आए बसे साधु के संग अनदिन नाम ते आवे रंग आवत सोजन नाम है राता जाको दया मया विधाता एक आमन फिर जो न आया नानक हर कै दर्स सुमाया श्लोक या जत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे।

एक नाम ले मने परो यैया जन्म नहारी है और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक आत सुंदर कुलीन चतर।

जम मरे गर्भ जून दुख पाए मोह मगन लपट तरह आहो आवे जाए टहे पर टहे अब टहे परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए सुमाए।

आया उस्त करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होताहु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मन मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुक्म न प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक।

गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन।

कर कृपा। हम मूढ़ पापी जित लगतारा, गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। इहो श्लोक आद अंत पढ़ना, गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार, सदगुर प्रसाद आदगुर ए नमः, जुगादगुर ए नमः, सदगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल क्लेश तन मय मिटावो। सिमरो जास विषम पर एक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुधाखिर, इन्ने राम नाम एक आखिर। इनका एक जिह जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एक दस्त हुआरो, नानको संग मुहे उधारो। सुख बनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कई मन बसराम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै। प्रभ के सिमरन काल पर हरै, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ के सिमरन अन दिन जागै। प्रभ के सिमरन पौ न व्यापै, प्रभ के सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभ के सिमरन हृद सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ के सिमरन जपता पूजा, प्रभ के सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभ के सिमरन तर्क है माननी। प्रभ के सिमरन हुए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल भला। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा। प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सबके सुझे। प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय सुमाए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंत, प्रभ को सिमरह से पुतवंत। प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन रमल रीता। प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कभो ना चूरे। प्रभ के सिमरन हर गुरबानी, प्रभ के सिमरन सहे सुमानी। प्रभ के सिमरन नित्य लयासन, प्रभ के सिमरन कमल।

नाम की महिमा, संत दिवस, संत प्रताप, तुरत सवनस, संत का संगवड़ भागी पाईए, संत की सेवा नाम ते आईए, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए श्लोक, बहु सतर बहु सिमरति पेखे सर्ब टंडोल, पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप तव ज्ञान सब ध्यान, खड़ सातर सिमर तव ख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खण पृथ्वी फिर तिर जीव, मां उदास तपी सरतीव, अग्र माए होमद प्राण, तानक असव हैवर भूमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अध साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, हर के नाम तमसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गद पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुट्टे,

सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजय पिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक बस्त कारण विखोड़ गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को खा करे, जे ठाकर सो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सौ अपनी दे रास, खाद पीत बरते अनदे उलास, अपनी अमान कछ भौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस।

मिथ्या ताना नहीं पर पुकारा, मिथ्या बासले दबकार, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सबल दे नानक हर हर नाम लय, बिरती सागत की आरजा, साज बिना के होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिगाय, मेघ बिना जो खेती जाय, गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जान नहार प्रभु परवीन, बार पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आपत जावत जन्मय मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पाने तिन प्रवजाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप कर तन बेरा, किसे दूर जिनावत, किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यान पर

सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल ब्रह्मज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी कै नाही अवमान ब्रह्मज्ञानी ऊच ते ऊंचा मन अपने के सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन

ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परे उपकार्यो माह, ब्रह्म ज्ञानी कै नागी तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हो सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सोफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माह, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सबसठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी ता जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, परत्रे रूपना पेखे नेतर, साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, तपते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद दिखिया पर हरे।

प्रवते हुए प्रम है सुमात ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम परगास कई कोड तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सदसदी जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्मरस तुख सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जोत पावे सोई होग खिन में थाव्यो था पनहार अंत नहीं किस पारावार हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ पावे मान हुगद पावे प्रभ पावे ता पात्र त्रावे प्रभ पावे बिन सास ते रख प्रभ पावे ता हर गुण पख प्रभ पावे ता पतत उधार आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप स्वामी खेले बिगसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मान गुते क्या होए आवे जो तु पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तु पावे सोई करे अनजानत दिखिया में रत जे जानत अपने आप बच परमे पूला दावे निवख मैं चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिश कशु न आवे तिस तत्काल दैज प्रटावे जाको अपनी तरह बगशीस ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिण सत की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करण करावन सर्व।

तीर्थ में आवे कभू पला पला कहावे यूं प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कभू होए पंडित करे बखियान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तड़ती स्नान कभू सिर साधक मोह ज्ञान कभू कीड हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी। कर कर सुनी श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन पर हो जन उदर नहार, संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार। अष्टपदी संत के दुखन यार जा कटे, संत के दुखन जनते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के हत्ते को रखे ना कोय, संत के दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतर। संत के दुखन ते मुख पावे, संतन के दुखन काग जून लवे, संतन के दुखन सर्प जून पाए, संत के दुखन त्रिगत जून किर माए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को शले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संदोकी का थाओ को नागे। नानक संत पावे ता ओए पीगत पागे, संत का निंदक मां अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक मां तेयारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी

का दुखी जन्म मर तनकी दुख ना सुखते टर तनके दुखी को ना गिटाओ नानक संत पावे ता लहे मिलाए संत का दुखी अद बीज ते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे तनके दुखी को उद्यान फरमाइए तनका दुखी उजड़ पाईए तनका दुखी अंतर ते थोता जो साथ बिना मृतक की लोता संत के दुखी की जड़ किश ना गए आपन बीज आपे ही खागे तनके दुखी को अवर न रखन हार नानक संत पावे ता ले ओबार तनका दुखी यों बिल लाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए तनका दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पावक ईतन नहीं तापे तनका दुखी छुटे अकेला ज्यो पुआड़ तेर खेत मैं दोहेला तनका दुखी तर्म ते रहत तनका दुखी थल मिथ्या कहत किरत निंद का तुरही पया नानक जोत पावे सोई थे संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी तो दरगह मिले सुजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है तनके दुखी की पुजे नयासा संत का दुखी उड़ चले निराशा संत के दुख ना तृष्ट कोय जैसा पावे तैसा कोई होय पया कीर्तना मेटे कोय नानक जाने सच्चा सोय सब कर सके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो साध ग्रास।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगाश साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साधना चल बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कर्ण सो प्रसमरथ विरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्वन दान मय हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्धो हर कै नाए दस ताव ते आवेठाए ताको बिगन ना लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

पाए पौड़ी सब सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर घर और तारिया सब सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुम मारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलेओन मुख गुरमुख नाम त्याय सी सो करे जिस सतगुर पाव सी गुर पूरा करीम साए सी जिन अंदर नाम निदान है तिनका पाव सब गवाए सी जिन रखण कौ हर आप होए और केती चख चख जाए सी जन नानक नाम त्याय तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन पाम दी गुर सतगुर की वड्याई हर राखो पय सतगुरु की निर चढ़े सवाई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छिड़ाई और सतगुर तान दी बाणगार इन सब आन निवाई जिनी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर इनके सब पाप गवाई हर दरगे ते मुख उजले बहु शोभा पाई जन नानक मंगे तूड़ तेन जो गुर के सिख मेरे पाई पौड़ी हो आग सलाई सिफत सच सच सच्चे की वड्याई साराही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सा सच्चा रज नी चखया से त्रिपतरे आघाई त्यो हर से ही जान दे ज्यो गुंगे मिठाई खाई गुर पूरे घर प्रसेव्या मन वजी वाधाई सलोक महला चौथा जिन्ना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया हर जाने से ही बिरो हौ तिन विटो सद कुम खोलिया हर मिलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन विटो तन रोलिया जो सिख गुरकार कमावे हौ गुलम तिना का गोलिया हर रंग चलूले जो रते।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुझ जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हबठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ, जे कड़ राम रहया भरपूर, इनकी पाग

दो पदे नामे जोग ध्यान चित लाया बिन बैराग न छूट समाया कैसे जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम अधारा रहाओ कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन गौड़ी कबीर जी जे सिर रत

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। बिखिया अजो सुत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। सनकादक नारद मुन सेखा, तिन पी तरमय।

केतक सिद्ध पए लिव लागे, हरहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे, जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम ना पछाना, गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही, हर ताज कद काहू के जाही, हरहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर कर जातन सोही, सो साहेब रहा पर पूर, सदा संग नाही हर।

आओ साधु संगत दियो रलाए पंच दूत ते लियो छिड़ाए अमृत नाम जपो जब रसना अमोल दास कर लीनो अपना सतगुर कीनो पर पुकार काढ लीन सागर संसार चरण कमल स्यो लागी प्रीत गोविंद बसे निता नित चीत माया तप्त बुझिया अंग्यार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रस्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दरड़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज कबीर को स्वामी गरीब निवाज जल के सूतक थल के सूतक सूतक ओपत होई जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक सूतक परज बगोई कौरे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रगाओ नयनो सूतक बयनो सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परे रसोई फासन की बेद साव को जाने छूटन की एक कोई

इस माटी में पवन सुमाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रखाओ, गर्भ जो में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुड़के ठौर नट आयो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, डरके नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परमन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर चित चेतया, आराम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पगत करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारहवीं, आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तुहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुई सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारहवीं, बेपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस कहां पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरे ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटा ना रखाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुग लो तंदा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारहवीं मारे छाडो परम, पलट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे फांडे, डग मग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाइये, लीनो हाथ संधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या फिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा गौड़ी तेरवी, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत भी चार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहिब रोस तरो के प्यार, नाम तेरा आधार मेरा।

भगत हेत अवतार लियो हो। आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दसनाही तब्यो।

आद करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मैं बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बे सगल बिखरे।

अवर्ण करना जाई। जैसा वर्ते तैसो कहिए, सब तेरी वड्याई। कल कलवाली माया मद मीठा, मन मतवाला तीवतर है। आपे रूप करे बो भांति, नानक बपड़ा एव कहे। आसा महला पहला, वाजा मत पखाव जपाओ। होए आनंद सदा मन चाओ, एहा भगत एहो तपताओ। ए तरंग नाचो रख रख पाओ, पूरे ताल जाने साला। और नचना खुशियां मन माह, हरहाओ ससंतोख वजे दोए नाल। पैरी वाजा सदा निहाल, राग नादनी दूजा पाओ। ए तरंग नाचो रख रख पाओ, पाओ फेरी होवे मन चीत। बहिंदियां उठदियां नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाह। ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

एक वर्ण दिसे सब खेह जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम र जाए आसा मोहल्ला पहला एको सरवर कमल अनूप सदा बेगास परमल रूप उज्जल मोती चुगे हंस सर्व कला जग दिसे अंश जो दिसे सो उपजे बिनसे बिन जल सरवर कमल न दिसे रहाओ बिरला बूझे पावे भेद साखा तीन कहे नित बेद नाद बिंद की सुरत सुमाए सदगुर सेव परम पद पाए मुक्तो रातो रंग रवानतो राजन राज सदा दिगसंतो जे तू राखे किरपा तार बूढ़त पाहन तार तार तिर पौन मैं जोत तिर पौन मैं जानिया उल्ट पई कर कर मैं आनिया अहंस भगत करे लिवलाए नानक तिनके लागे पाए आसा मोहल्ला पहला गुरमत साची हुजर दूर बहुत सियाणप लागे तूर लागी मैल मिटे सजनाए गुर प्रसाद रहे लिवलाए हाय हजूर हाजर अरदास दुख सुसाच करते प्रपास रहाओ कूड़ कमावे आवे जावे कैन कसन वारा नहीं आवे क्या देखा सूझ बूझ न पावे बिन नावे मन तृप्त न आवे।

लार रत्ता मेरा मन तीरा कथनी कहे कहे से मुए सो प्रदूर नाही प्रतु है सब जग देखिया माया छाया नानक गुरमत नाम प्याया आसा महला पहला ते तुका कोई पीख का पीख्या खाए कोई राजा रया सुमाए किसी मान किसे अपमान ताए उसारे तरे त्यान उते वड्डा नाही कोय किस वे खाली चंगा होए मैं ता नाम तेरा आधार।

मान का अंधला माया का बंद खीन खराब होवे नित कंद खान जीवन की बहुती आस लेखे तेरे साध गिरास ऐस अंधले दीपक दे भौजल डूबता चिंत करे कहे सुने जो माने नाव।

आए, नदर करे ता सदगुर मिले, परमत नानक पहुंचल तर। आसा मोहल्ला पहला, पंच बदे दुध बिन तेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज कामना ही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसरे दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही। हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पौन ना वाजे, चरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे। अखर देख बाग पे चोखी, सिंचित पाओ करेगी, सबना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेगी। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही। दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावे जियो रहे नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही। कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही। आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुछ पाती। हर नामा जाजा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ। बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम सुमाल। ऐथे उथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर न पाल। इन्ने तत गगन दा द्वार, हर मुख पाड़ पड़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागे, पारू रश विचोर न लागे। तिलक ललाट जाने प्रावेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक। आचारी नहीं जीत्या जाए, पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई। ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई। तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार। गुरमुख साचे साचे दरबार रहाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास। मैलनी खजम सुने साबास, सच्चे तख्त बुलावे सोए। देव डियाई करे सो होए, तेरा तान तू है दी बाण। गुर का शब्द सच निशान, मन हुक्म सु प्रगट जाए। सच निशाने ठाक न पाए, पंडर पढ़े वखाने वेद। अंतर वस्त न जाने पेद, गुर बिन सूझी बूझ न होए। साचा रवरे या प्रसोए, क्या हो अखा अख वखाणी। तू आपे जाने सर्व वडाणी, नानक एको दर दी बाण। गुरमुख साजता गुजरान, आसा महला पहला। काची गागर दे दुखेली, उपजे बिन से दुख पाई। यो जग सागर दुत्र क्यों तरिए, बिन हर गुर पार न पाई। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे। सर्बी रंगी रूपी तू है,

तू सुपाए भगत भंडार दिगे घर अपने गुण गाक वण चले जाए। एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग आसा कर अठवे के काफी महला चौथा आया मरण तुरा हो हमें रोइये गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होइये गुर पूरे साबास चलन जानिया लहा नाम सो सार शब्द सुमानिया रखाओ पूर्व लिखे ढे से आए माया चलन आज के कल तुरो फुरमाया बिरथा जन्म तिना जिन्नी नाम सारिया जुए खेलन जग के ओ मन हारिया जीव मरण सुख होए जिना गुर पाया नानक सचे सच सच सुमाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया गुर प्रसादी बुझ सच सुमाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सतियार मैल बुलाया रहाओ अंतर नाम निधान गुरमुख पाईये अंदर नाम त्याय हर गुण गाईये अंतर वस्त अनेक मन को नहीं पाईये होमे गर्भे गर्भ आप खुवाईये नानक आपे आप खुवाईये गुमत मन प्रगाश

परदेश त्याग सौदे को आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुणरास बन पल्ले आनी, देख रतन ओ मन लपटानी, सह व्यापारी द्वारे आए, वखर काढ़ो सौदा कराए, रहाओ सहे पठाया सहे पास, अमोल रतन अमूला रास।

आग हो मारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निसबसर प्रिय संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिट पाए सगल निधान, दुट दूध की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने,

जगत गृह ऐसा गए सुंदर लाल प्रभ पावाता सदा निहाल बिंजन भोजन अनग प्रकार रंग तमाशे बहुत विस्तार राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन ही त्रप तृष्णा ना जायस बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरयो ना कोए जिस मस्तक भाग तिन सदगुर पाया पूरी आसा मन तृप्ताया प्रभ मिलया ता चूकी डंजा नानक लद्दा मन तन मंजा आसा महला पंजवा पंच बदे प्रथमे तेरी निकी जात द्वितीया तेरी मनिए पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगड़ रूप मन में अवमान तो नी स्वरूप सुजान विचक्कन।

कुमार एक वस्त बूझ ता होवे पाक, बिन बूझ तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिसते पाइये हर पुरख सुजान। आसा मोहल्ला पंजवा, एक तुके चौप दे, एक कड़ी दिन समुख को बहुत देहारे। मान ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिनस मुख को कभू ना बिगावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मुख को पिरे मिलावे। हरहाओ चार पैर क्यों जुगे सुमाने, रैन पई तब अंत न जाने। पांच दूत मिल पिरो विछोड़ी, ब्राह्मण रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखा।

साद संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए गारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्ये रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एक को एक आप एक एक, एक कहे सगला पासारे। जप जप होए सगल साल जन, एक नाम तय बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारावारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को।

अनन जठर मैं प्राणी ओरहता नाम आधार अंध करे साज सास मार ना पोहे अगनार पर तान पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवा

आगे हीते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, ऊर चूक अपना बार्ग बक्सया, पार ब्रह्म भगवाना, सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग मास उपाया, हर अमृत मुख नाम दिया, हरहाओ अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पए, अंधकूप महाकोर ते बहा पकर गुर काढ लिए, निरपो पए सगल पो मिटिया, राखे रखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रा मेरे, कार्ज सगल सवारे, गुण निदान साहेब मन मेला, शरण पया नान सोहेला, आसा महला पनवा, तू विसरेता सब को लागू, कीत आवे ता सेवा, अवर न को दूजा सूज, साचे अलख अपेवा।

गुरपूरे के चरण गए, कोड़ जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी मया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाओ, कहो नानक गुर ब्रह्म पखोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु न जाना मत मेरी तोरी, बिनवत नानक ओढ़ प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो सरनाई, मुको देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चै नाय, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब तिसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जन के, आत निर्मल दास की जुगता, रहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण को लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परमो जोन पवाया, अस्तिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहां सुख आगे गद पाई, आसा

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट है रे जाका अपाग सभा संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो सरना आचड़े।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाए ठगौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्त नेम कर था के पुनः चरना तड़ तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमें पचे मनमुख मुंह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब सरे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संतृप्ता से हर घर त्याए हर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जांत दूर सो जन्म मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ते चित तनाखे मां बिखिया में दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाईगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जबत मन तन सब हरिया काल मर दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया जिस

वन्यन वहन्दे बोतड़ा हा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना मां विघम संसार विरले पेखिया छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोई ना किसी संग काहे गर्बी है एक नाम आधार बहुजल तरबी है।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना गिरड़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी दिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी।

जैसे अंब कुंड कर राख्यो परत सिंध गल जाहा, आवग आग्या पार ब्रह्म की उठ जासी मोत चसाहा। रे मन लेखे चाले लेखे बैसे लेखे लेंदा साहा, सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा। आसा महला पंजवां अबुट बाते पई सिदरी, दूत दुट सजनई अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलीन बुद्ध खशनई जो कृपा गोविंद पई। सुख संपत हर ना फल पाए सदगुर मिलई, हरहाओ मुए किरपन को कोई न जानत, सगल पौन प्रगटई संग बैठनो कई न पावत। हुन सगल चरण सेवई आड़ आड़ को फिरत टूंढते, मन सगल कृष्ण बुझ गई। एक बोल भी खपतो नाही साध संगत सीत लई, एक जी गुण कमल वखन आगम आगम अगमई। दास दास दास को करियो जन नानक हर शरणई, आसा महला पंजवा। रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला, तोटे को बेगताया सत वखर तू किन्ने नाही। पापी बद रे नाया सदगुर तेरी आसाया, बदल पावन तेरो नाम पार ब्रह्म मैं एहा ओटाया। हरहाओ गंदन वैन सुने उरझावे, नाम लयत अलकाया निंद चिंद को बोध उमायो, बुझी उलटाया पर तान पर तान परती निंदा। अखाद खाई हरकाया साज धर्म से रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभु ठाकुर भगत टेक हरनाया। नानक आये शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा। मिथ्या संग संग लपटाए मोह माया कर बंद, जय जानो सो चीत न आवे अंग बुद्ध पै अंधे। मन बैरागी क्यों न आराधे ताज कोठरी माहे तू बसता, संग सगल दिखे की व्यदे रखाओ। मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन शीजे अर जादे। जैसे मीठे साध लुभाए झूठ तन दुर्गद, काम क्रोध अर लोभ मोह ए इंदी रस लपटादे। दीप वारी पुख बिधाते बौर बौर जन मादे, जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुरमिल सब सुख लादे। कहो नानक जिन रैन तिहाव मार काढ़ी सगल उपादे, त्यों जप्यो पाई पुरख बिधाते। पयो कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। निमख काम स्वाद कारण कोट दिन सुदुख पावे, करी मोह तरंग माने फिर बौर बौर पछतावे। अंधे चेत हर हर आया तेरा सोधन नेड़े आया, रहाओ पलक दृट देख पूलो आक नीम को तुमर। जैसा संग विशीर सिंह है रे कैसो ही यो पर गृह, बैरी कारण पाप करता बस्त रही अमाना। छोड़ जाए तिन ही सो संगी साजन सिंह बैराना, सगल संसार हे

निकटी हुए दिखावे। जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल हुए आवे। रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी, जो अपने प्रभावे। तिस की सोए सुनी मन हरिया।

नटुआ पे दिखावे बहु विद, जैसा है ओ तैसारे, अनक जोन प्रम्यो प्रांपीतर, सुखे नहीं परवेसारे, साजन संत हमारे मीता, बेन हर हर अनीता रे, सा संग मिल हर गुणगा।

खोजत खोजत खोज विचार्यो तत नानक ओ जाना रे। सिमरत नाम निदान निर्मोल मन मानक पति आना रे। आसा महला पंजवां दो पदे गुर प्रसाद मेरे मन वसया। जो मांगो सो पावो रे। नाम रंग यो मन त्रिवताना बौर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रैण दिन से गावो रे। खिन में थाप्यो थापन हारा तिसते तुझे डरावो रे। रहाओ जब देखो प्रभु अपना स्वामी तो अवरे चीत न पावो रे। नानक दास प्रभु आप पै राया प्रम पौ मेट लखावो रे। आसा महला पंजवा चार वर्ण चौह के मर्द खड़ दर्शन कर तली रे। सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोय शलीरे। जिन मेर मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे। रहाओ वड़ी कोम पस पागे नाही मोकम फौज हठली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलया सा संगत के चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सुल रस पीकी रे। रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लाई की रे। बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते टारी रे। रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन।

मो कुटुंब दिखे रसमते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नहे नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसाहे

आया सेव कमाया गौन रस रस गावे एक है अस दर्स ते अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आये सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख बेदाता नानक कड़ कड़ आही आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुगिया हुआ राज कहावे हों कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर केटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवां कर चौदवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम सिउ लाग रहे रहाव जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवां मिल राम प्यारे तुम बिन तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध शरण प्रभु संग वस आसा महला पंजवां तार पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपटबाजी हार मूका पछतायो मन पोरा ध्यान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए काम ना करे ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवां बापार गोविंद नाए साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद सिउ संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन निधान पाए सब तजी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां को बिखम

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृतस खोजत पावो सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लभ लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गात गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम सिया सुखदाता अनदिन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास।

ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न जीने तामसी काहे पए उदासा एक बिंद जिदन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी प्रमे आवे जावे एक गिरगी सेवक सदका गुरमती लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाने नानक नाम न विसर ऐसा ते मन माने आसा महला पहला मनसा मने समायले।

एक गर्भ बन जाएंगे। मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहिब हृदय वसाए न पछोताव ही, गुण गां बख्शनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला सच टिके कर आए शब्द उतावला। जय देखा तै सोए अवर न जानिए, गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए। रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई, चले सदार जाए अंक समावई। सच्चा साहिब मन वसे वसिया मन सोई, आपे दे वड्याईया दे तोट न होई।

मैं टेक आधार तू दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही भगत तेरी हैरान दर्द गवावगी दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी वेला सज परवान शब्द पछाण सी सत संतो कर पाओ उस हर नाम से मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे।

रात नाम अमोल है, तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया, आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई, हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये, आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए, नडुए सांग बनाया

आस तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम सुमाणी आसा महला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाए गे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अगन तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोय न जानी माया होए दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिर पवन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गो सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साध दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

नाम ते आई है, ज्ञान प्रगट होए, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख अधूर, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर रहाओ, गुरमुख आप पछाणिया, तिनी एक मन कहाया, सदा रवे तेरे अपना, सच्चे नाम सुख पाया, ए मन तेरा को नहीं, तर वेग शब्द विचार, हर सरनाई पज पौ पाए मोख द्वार, सब सुनिए शब्द बुझिए, सच रखे लिवलाए, सब देखो में मारिए, सच्चे महल सुख पाए, इस युग में शोभा नाम की बिननावे शोभ न होए, ए माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम न होए, जिन्नी नाम सारे से मुए मर जागे, हर जात न आयो दिष्टा माए सुमाए, एक आपे बक्स मलायन अनदन नामे लाए, सच कुमावे सच रहे सच्चे सच सुमागे, बिन शब्दे सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए, बिन नावे दुख पाए सी ना मिले तसे रजाए, जिन बाणी से चित लाया सेज निर्मल परमान, नानक नाम तिना कदे ना विसरे ते दर सच्चे जान, आसा महला तीजा शब्दो ही भगत जाप दे, जिनकी बाणी सच्ची होए, विचू आप गया नव मनिया सच मिलावा होए, हर हर नाम जन की पत होए, सब तिना का जन्म है तिन माने सब कोए, रहाओ होमे मेरा जात है अत क्रोध अवमान, सब मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान, पूरा सदगुर फेटे सबल जन्म हमारा, नाम न मेरे दे पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवे सो तन पाए तिन अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार ना जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आप खुआयन जुए बाजी हरी, बिन प्यारे भगत न होवई ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन तीर, जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय एको नाम से होमे दुबदा मार, भगता की जद पत एको नाम है आपे लए सवार, सदा सरनाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्ज सार, भगत नराली अलहादी जापे गुर विचार, नानक नाम है।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास कणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जय चल तो पेकिए नेत्र घर को नाओ धर्म तराई सास्यो निचल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंद पर को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल वोत पए लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेह सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे

ब्रह्म प्रसिमरिए प्यारे दर्शन को बल जाओ, जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए। क्यों तन वेती संत पे प्यारे प्रीतम दे मिलाए, तुसी गर्भ के आके भी

आवे सो करी प्यारे, आवर केश करण न जाए, दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जे चपिए घर नाओ, साई कार कमावनी प्यारे, और मस्तक लेख लिखाए, एक को आप वर्तदा प्यारे, घट घट रहा समाए, संसार कूबते उदरले प्यारे, नानक हर सरणाए, राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ससे सोए सिटिजन साजी, सबना साहेब एक पया, सेव तरह चित जिनका लागा, आया तिनका सबल पया, मन का गे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़या रहाओ, ईवड़ी आदि पुरख ए दाता, आपे सच्चा सोई, इना अखरा में जो गुरमुख बूझे, तेस सिर लेख न होई, ऊड़े ओ माता की कीजे, जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया, गंगे ज्ञान बूझे जे कोई पढ़िया।

आए माया के संगल बंद लया खखे खुंद कार सा आलम कार खरीद जिन खर्च दिया बंधन जाके सब जग बांधया अवरी का नहीं हुकुम पया गगे गोए गाये जन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया ताड़ पांडे जन आवी साजी चाड़ नवागे तई किया कगे काल सेक जे काले शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे सम कर जाने एन बद साहेब रम तरह चचे चार वेद जन साजे चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी पोगी पढ़िया पंडित आप थिया छे छे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय भुलाई गए आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलया जजे जान मंगत जन जच लग चौरासी तीह पवया एको लेवे एको देवे अवर ना दूजा मैं सुनया झजे चूर मरो क्या प्राणी जो कुछ देना सो दे रहा दे दे वेखे हुकम चलाए ज्यो जिया घर जिक पया न्यन्ये नदर करे जा देख दूजा कोई नाही एको रव रहा सब थाई एक वसया मन माही तट टंच करो क्या प्राणी कड़ी के मौत के उड़ चलना जुए जमन हारो अपना पाज पड़ो तुम घर सरना ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जा निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डडे डंप करो क्या प्राणी जो किश हुआ।

दिया सब नी लिया, तर्मी कर्मी हूं पया, नन्ने ना पूनित पुगे, ना डीठा ना सम्मलया, गल्ली हो सोहा गण पैने, तंत न कबहू मैं मिलया, पप्पे पासाओ परमेश्वर, वेखण को प्रपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रब रहया, पप्पे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर शरणागत

तेत अगम पूरे तो केत बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाई गए राम सच शब्द कमाई गए निज कर जाइए पाइये गुणी निधाना तेत साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना प्रधाना जब तब कर कर संजम था की हट निग्रह नहीं पाइये नानक सहज मिले जग जीवन सदगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर तित रतन कणे रे राम कर मजनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रपाए पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया ताज सच नाम उरतारे होमे लोभ लहर लभता के पाए दीन दयाला नानक गुरसमान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला ओ बन बनो देख रही किरण देख सुभाया राम तिर पवन तुझे किया सब जगत सुभाया राम तेरा सब किया तू थिरथिया तू समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन के सालाही अण मंगया दान दीजे दाते तेरी भगत परे पंडारा राम नाम मुक्त ना कोई नानक कह विचारा आसा महला पहला मेरा मनो मेरा मन रता राम प्यारे राम सच साहेब आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोच अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आजुगा दी है पी होसी अवर झूठा सा मानो कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाणे महर्ष नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सिखाई राम हो मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित भाई सुच तराई संग न संपे नारे सायर की पुत्री पर घर त्यागी चरण तले विचारे आद पुरख चलत दिखाया जे देखा तै सोई नानक हर की भगत न छोड़ो सहजे होए सोई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच समाले राम अगुण मेड़ चले।

शांत करती जा। साजन मेरे प्रीतमो तुम सह की भगत करे हो, गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो। भगत

भगत भाव यो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोयला तेन ससदा जो हर गुण गावे। हर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरी केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिव लावे। जय जय मन तू तामदा तय तय हर तेरे नाले। मन सियाण पछोडी है गुर का शब्द समाले। साह तेरे सो सो सदा है।

तारो कर ले वो शब्द सुपाए जियो। आसा मोहल्ला चौथा मन नाम जपाना हर घर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो। मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुक्त सुखोई। जीवन मरण हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई। मन हर हर वसया गुरमत हर रसया हर हर रस गटाग पियाओ जियो। मन नाम जपाना हर घर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो। जग मरण न पाया निद आप लुकाया मत जम पकरे ले जाए जियो। हर अंतर बार हर प्रभ एको यो जीड़ा रखिया ना जाए जियो। क्यों जियो खीजे हर वस्तु लुड़ीजे जिसकी वत सो ले जाए जियो। मन मुख करण पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो। जिसकी वस्त प्रभ लय स्वामी जन उबरे शब्द कमाए जियो। जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकरे लय जाए जियो। तो मरण लखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो। हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो। हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवें दुख मेटे। हर रामे नाम सुमाया हर जान प्रभ रल एको होए हर जान प्रभ एक समान जियो। तुर मनन लखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो। जग उपजे बिन से बिन सुबिनासे लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। गुरमंत्र दृढ़ाए हर रस करसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो। हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर भौड़ मरण ना होई। हर हर नाम अमर पद पाया हर नाम समावे सोई। जन नानक नाम आधार टेक है बिन नावे अवर ना कोए जियो। जग उपजे बिन सह बिन सुबिनस लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा शंत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। ताकीगत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार अपरंपर आप अपना जाने क्या ए जंत विचारे कहिए जो तुद आख मखाने। जिसनु नदर करे तू अपनी सो गुरमुख करे विचार जियो। वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख परंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहा समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख अदृत्या गोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहे दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तो देवड अवर ना कोई। तेरा शब्द सब तू है वरते तू आपे करे सुहोई। हर समय रविया एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो। तब तू है करता सब तेरी वड्याई जो भावे तिवे चलाए जियो। तुद आपे भावे तिवे चलावे सब तेरे शब्द सुमाए जियो। सब शब्द सुमावे जंत भावे तेरे शब्द वड्याई। गुरमुख बुद्ध पाइगे आप गवाइये शब्दे रहा सुमाई। तेरा शब्द अगोच गुरमुख पाइये
नानक नाम समाए जियो, तब तू है करता सब तेरी वड्याई।